0: हेलो, कुमाई उवितो, हेलो,
1: हेलो,
0: एवं,
1: टिंको सेन्नाने
0: एवं तेंगे वाते नुना मकारो,
1: वावा
0: आउटो वावा,
1: या
0: हुंगा होडियो,
1: आवनो सेतु वावा
0: निया,
1: यारो या ए अपन्या